0: ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜੇ ਲਾਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਖਲੀਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
1: जी सत श्री अकाल हुसनैन साहब, कैसे हैं? आपको भी आधा वर्ष करता हूँ जनाब।
0: थैंक यू
1: वालेकुम साहब। आप कैलगरी गए थे, तशरीफ लाए, चलिए अच्छा है, जाने से पहले मैं मुलाकात कर लूंगा कल वल आपसे, क्योंकि यादें आपसे बड़ी वाबस्ता। नहीं नहीं, बिल्कुल हाजिर हूँगा, और स्पेशली मेहमानों से तो हमारी बड़ी खातिर तवाज़ो और मोहब्बत रहती है जनाब।
0: आपके साथ बातचीत कर लेंगे हम जब आओगे किसी दिन।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी टॉपिक के मुताबिक बात दरअसल ये है दर्शन साहब, देखिए ये चीजों में असर था पहले, ऐसा नहीं है कि पंजाब में मानते या इंडिया में, वजह थी क्योंकि वाकयात पेश आते थे तो एक दूसरे से, जमाने में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो एक जगह आपने देखी होगी पंजाब में भी है, वो क्या है कि बड़ा झाड़ होता था, उसके अतराफ कैरी होती थी बनी हुई, यानी कि ऐसी बैठने की बेंच जैसी, सीमेंट की या पत्ते की कच्ची की बना लेते थे उसको, यानी मिट्टी की, तो उसमें बैठ के सारे लोग बातचीत करते थे, उसको बोलते थे खिस्सा दर खिस्सा जगह।
0: जी जी,
1: यानी वाक़े पे वाक़े सुनाते, यार तुसी सुनाओ की हाल है, घर में की चक्कर है,
0: जी जी।
1: वो यार वो बीमार हो गया सी, कैसा कैसा हुआ जरा बता। अब वो बोलता है वो फुला आदमी आया था, या वो यार वो बंदे दे नजर दे खराब है सी, तुसी एक काम करो उसे बर्तन गिलास तुसी अलग रख दो। अब वो क्योंकि दूसरा बंदा अगर निकालेंगे तो मिलेगा नहीं आराम का, लिहाजा उसी को रहने दो लेकिन उसके बर्तन अलग कर दो। ये जो डायरेक्शन सारे मिलके देते थे उसमें कोई सियाना तेज दिमाग वाला होता तो उन्हें बताता था साबित करके कि भाई देखो इससे ये असर हुआ। और ये सारी चीजें जो है मुख्तलिफ किताबों में आज भी लिखी हुई है पुरानी। मुझे याद है दादाबा के पास एक अमृतसर के गुरुद्वारे साहब के पास से किताब पुरानी थी, लेके आए थे, जो प्रिंट हुई हुई थी उस जमाने में अमृतसर में उर्दू में, उसमें लिखा हुआ था फतुहात गैबी के वाकयात। अब जब मैं सातवीं जमात में था, शुरू से बहुत तेज बच्चा हूँ मैं पढ़ने में, उर्दू फारसी अरबी तीनों पे कमांड है मेरा, तो मैं बोलता था पता नहीं क्या चीज है। अब जो मैं पढ़ने लगा तो मेरे समझ के ऊपर से चले गई वो, मैं तो बच्चा था ना, बात चीजें उसमें अजीब और गरीब लिखी हुई थी, लेकिन वो जैसा जैसा शऊर आया मैं देखा कि भाई अभी वाकया है, बाकी सच होता है। तो उसमें एक वाकया छोटा सा आया था, मैं आपको बता देता हूँ कि एक गांव में पंजाब के किसी इलाके में, आपको मालूम है वो दाची बोलते हैं ना आप लोग, ऊंट पे जो जाते क्या बोलते हैं,
0: ऊंटनी बोलते हैं उसको,
1: हाँ ऊंटनी को, तो वो सुर्ख ऊंट था किसी जमाने में कहीं अमृतसर के करीबी दूसरे गाँव में। तो जब ये कोई बंदा लेके गया तो उसने कहा यार तू यहाँ क्यों लाया ये ऊंट? बोले क्यों यार क्या हुआ? बोले हमारे गांव में एक बंदा है जिसकी नजर ऐसी है कि जब वो तेरे ऊंट को देख के बोलेगा ना क्या चंगा ऊंट है, बोलते ही तेरा ऊंट गिरेगा और पैरा हाथ मारने लगेगा, तड़पने लगेगा। बोले अच्छा, बोले कहा है जरा वो बंदे को तो बुला ले। तो बोले तेरे पास ऐसी क्या चीज है जो इतने दावे से बोला? बोला मैं इतना अच्छा ऊंट रखता हूँ तो अपने साथ कुछ हिफाजत का सुरक्षा का इंतजाम भी रखता हूँ, बुला तो सही जरा उसको। तो जाके उसको लड़के बोले भाई वो ऊंट आया गाँव में बड़ा जबरदस्त है। बोला कहा है? बोले फुला जगह ठहरा हुआ है झाड़ के पास, चल चल चल बोल के तेजी से भागते भैया। जैसे ही ये ऊंट पे नजर मारा लेकिन नजर का इसका असर हुआ ही नहीं। ये परेशान, बोले लोग परेशान, यार ये कैसा हो गया? आज तक तो हर चीज गिर जाती थी, टूट जाती थी, ये ऊंट नहीं हुआ। इतने में ये जो बंदा ऊंट को देख रहा था ना, ये ऊंट इसके पे से नजर हटाते हुए कुछ पढ़ रहा था, इतने में इस पे नजर डाला
0: जी।
1: जो ऊंट को देख रहा था वो बदनीयत, जैसी इस पे नजर मारा वो बंदा नीचे गिर गया, गिर के मछली की तड़प तड़पने लगा, पेट पकड़ लिया, बोला पता नहीं क्या हुआ मुझे। बोला आइंदा से कभी किसी को नहीं देखना, तेरी जितनी ताकत थी मैं सल्ब कर लिया हूं। बोला सल्ब यानी उसको निकाल दिया तेरे अंदर से, अब तू जा, तो किसी को नुकसान देने वाला नहीं होगा। तेरा बड़ा चर्चा सुना था मैं, इसलिए आज आया था तेरा हिसाब करने के लिए, अब जा, तेरे को मैं बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। तो ये जो चीजें थे ये हकीकतन थे, हम आज नहीं समझते।
0: ये तो चलो खलील जी थी, एक बात हमने और भी की है कि अगर पानी हमारे में मक्खी गिर जाए तो हम पानी गिर देंगे, अगर घी में गिर जाए तो घी गिरेंगे, मक्खी निकाल के फेंक देंगे।
1: नहीं, मक्खी निकाल के घी में से इतना फेंकेंगे जितने हिस्से पे वो है, लेकिन आप ये देखिए
0: क्योंकि
1: पानी नहीं, पानी सारा इसलिए फेंक देते हैं कि पानी की खासियत यह है, तासीर यह है कि जिस चीज में वो पड़ता है वो उसको अपने रंग में ले लेता
0: जी।
1: तो नापाक चीज हुई तो सारी चीज नापाक हो गई बोल के फेंकते हैं। घी का, तेल का, दूसरे का ऐसा मामला नहीं है। इसमें क्या है, बहुत सी चीजें, ये भी वाकयात उसमें लिखे थे, उसका नाम था सेहत व जिंदगी के पहलू। और एक बात आपके प्रोग्राम में बोलते चलूं कि अक्सर आपने देखा होगा, ये सुना होगा पता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको और आपके सामईन को कि अगर आप सुबह में सो के उठने के बाद आपने गौर किया कि एक बालिश या 6 इंच आपका तकिया पीलो जिस पे सर रख के सोते वो नीचे की तरफ आ गया, तो समझ जाना कि आप बीमार होने वाले हैं। और अगर ऊपर की तरफ खिसक गया तो समझ जाना कि सेहत याबी हो रही। तो ये भी अलामतें होती हैं, इसको इंडिकेशंस बोलते हैं। ये स्वयं परमात्मा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आते हैं आपको, लेकिन क्योंकि आपके इल्म में नहीं है ये क्या चीज है, तो आप बर्दाश्त उसको समझा नहीं सकते। आप समझ रहे मेरी बात, एक नई चीज आपके साथ हुई तो आप बोलते हैं क्या चीज है यार ये मेरे साथ। तो ये चीजें हैं, बहरहाल इसके ऊपर बड़ी प्यारी चीज याद आई, वो ये है कि ये हादसात ना ये समझे अभी के मैं पस्त हूं मैं, शिकस्ता हो के भी ना काबिले शिकस्ता हूं मैं, मताए दर से दिल माला माल है मेरा, जमाना क्यों समझता है मुझे कि मैं तंग दस्त हूं।
0: क्या बात, क्या बात, चलो
1: क्या ख्याल, क्या ख्याल, क्या ख्याल।
0: थैंक यू,
1: दुआओं की दरखास्त है आपसे जनाब। सत श्री अकाल सर,
2: सलामत रहे।
0: सो दोस्तों 647-367-5353 साडे स्टूडियो दा नंबर है, तुसी भी कोई गलबात करनी होवे जिस विषय दे उपर साडी गलबात चल रही है ते जी आया नू तुसी फोन कर सकदे हो। बाकी एक छोटा जा मैसेज तुहाडे नाल शेयर करदे आं, साडे रेडियो प्रोग्राम दे जिहड़े प्राउड स्पोंसर ब्रम्पटन कैश एंड कैरी, ब्रम्पटन कैश एंड कैरी 100 कैनेडी रोड। तुसी अपने घर दी कोई भी चीज लैनी होवे ए टू जेड, कोई ग्रोसरी लैनी होए, कोई बर्तन लेना होए रेस्टोरेंट ले, कोई ग्रोसरी या बर्तन चाहिए हो, घर वरत्या जाने वाला कोई औजार चाहिए तुहानू, इन्हां दिनां दे विच अक्सर असीं घरां दे विच छोटी मोटी फुल्लां पौद्यां नूं लगाउणे आ या कोई होर छोटे मोटे बाग बगीचा असीं बनाउणे आ, इन्हां दिनां दे विच तुसीं कोई भी छोटा मोटा औजार लै सकदे हो, छोटी मोटी कोई दवाई तुहानू चाहिए आ घर दे विच वरती जाण वाली, फर्स्ट एड दे तौर ते जो असीं अक्सर घरां दे विच रखते सी, तुसीं ब्रम्पटन कैश एंड कैरी तो लै सकते हो। डिस्पोजेबल समान किन्नी भी गिनती दे विच चाहिदा होवे किसी भी डिजाइन दे विच तुहानू मिल सकता है। घर दे विच कोई पंजाबी थीम उसारना है, घर दे विच कोई फंक्शन है, मेहंदी है, कोई हल्दी है या कोई होर मंगनी है, शादी है, कोई किसी किस्म का कोई भी फंक्शन है, पंजाबी थीम डिवेलप करना तो पंजाबी सभ्याचार दे नाल रिलेटड कोई भी चीज तुहानू चाहिए ब्रम्पटन कैश एंड कैरी तो मिल सकती है। 100 कैनेडी रोड 905-238-4800 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਸਕੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਟੋਰ ਬ੍ਰਮਟਨ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪੌਂਸਰ ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕੇਟਰਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 100-125 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਫੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ 40-50 ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਠਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਮਿਠਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਿਫਿਨ ਲਗਵਾਉਣਾ 7 ਦਿਨ ਲਈ, 6 ਦਿਨ ਲਈ, 5 ਦਿਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ 114 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905-450-3333 ਔਰ 6300 ਐਰਨ ਮਿਲ ਪਾਰਕਵੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905-542-1333। ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੰਡਨ, ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਔਰ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਪਿੱਟੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੂਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਕੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਕੀਆ ਨੁਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब दे अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दी संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: पापा वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
1: शमी पठल होरा ने तुहाडा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
3: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
4: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: Sanja Virsa Media le aaye ne second annual picnic
1: Sunday 23rd August 11 AM to 4 PM at Balle Balle Farms.
0: Unlimited fun, masti te apne aan da hoega saath, bhangda, gidda, games, food stalls, mehndi, sab kuch reasonable rates te.
1: Tusi apniyan dishes vi bana ke le aa sakde ho. Pura picnic wala mahol, Punjab waliyan vibes. Aaj aur fir 23rd August din aitwar sabere 11 baje at Balle Balle Farms. 13219 Trinkozi Road, Caledon.
0: जानकारी जा स्पॉन्सरशिप ले हरजीत जजुआ नु कॉल करो 647-835-5294
2: ओए ट्रक काला लिया जदों वेखो एदियां कमानियां इटलियां रहंदियां की करा
3: मैं सुनया जी अपने पंजाबी भरावां जे अते गैरी ने खोल दित्ती है GTA विच ट्रकां दे स्प्रिंगां दी पहली शॉप PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट
4: पहुंचो 5330 ब्रेडको बुलेवार्ड मिसीसागा मेन इंटरसेक्शन डिक्सी एंड मैथसन
5: इथे पी लाइन लेजर मशीनां नाल अलाइनमेंट ते नवे स्टाइल दीयां मशीनां नाल बैलेंसिंग कीती जांदी है इन्ना ही नहीं 4 व्हीलर्स अते 18 व्हीलर्स दे टायर्स दा खास प्रबंध भी है जे तुसी ट्रकां ते ट्रेलरां दी कमानियां दा तसल्ली बख्श काम करवाना चाहुंदे हो
3: कॉल करो जेएन गैरी नू
5: 905-459-5533
3: 905-459-5533
5: PNJ स्प्रिंग व्हील अलाइनमेंट

0: taste. Book your next event now. 50 Sunnyvale Gate, Brampton, 905-790-1699. 905-790-1699.
1: याद है मैनू जदों मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, किन्नी परेशान हो गई सी मैं। इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, किन्ने झंझट। थैंक्स कर दिया मैं स्पीडेक्स ऑटो कलिजन वालियां दा, जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील किया, रेंटल कार भी दिती, ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दिता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडेक्स ऑटो कलिजन, 181 रदरफोर्ड रोड साउथ, यूनिट 11, ते या कॉल करो 416-277-9221, 416-277-9221।
2: F-150 Ford ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਟਰੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। F-150 ਜਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਜਾਂ ਲਿੰਕਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਰੋਹਨ ਚੋਪੜਾ, ਚੋਪੜਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚੋਪੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੌਪ ਸੇਲ ਇਨ ਓਨਟਾਰੀਓ, ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੋਂ ਚੋਪੜਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-316-9941।
3: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है, ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है, बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने, ते कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने, जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती है। पर कैनेडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। तुहानू डेट नू प्रॉपरली असैस करन, मैनेज करन, ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाण विच हेल्प करदे ने। इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच लिया सकदे हो, ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अब जी कॉल करो 416-518-3200।
4: ड्राइव कर रहे हो, शो नो एंजॉय कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो?
5: ड्राइविंग लाइसेंस?
4: नो।
5: पुलिस ऑफिसर?
4: नो नो।
5: ट्रैफिक लाइट्स?
4: नो।
5: देन
2: डायमंड इंश्योरेंस दे पवन कौर गिल दा ए मैसेज। मोस्ट ऑफ इंटोरियंस इग्नोर कर रहे हैं अपनी ऑटो इंश्योरेंस रिन्यूअल या अपने रेट नो चेक कर ले। आज ही कॉल करो 30 तो वध कंपनीज ना काम कर रहे पवन कौर गिल। 3 मिनट दे विच 300 तो लेके 1500 तक साथ।

0: Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 905-451-2600. Hello, bro. Kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja rahe soch rahe si Tim Hortons ch baith jaiye.
0: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy hoiyan chahidiyan ne. Nazara restaurant leke jao unnanu. Private booths ne full privacy mil di hai. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
0: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी कोई कॉल करो 905-451-2600 905-451-2600

0: ਵਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਜਾਣਾ 27 ਡਿਗਰੀ, ਲੋਅ ਜਾਣਾ 16 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਸਨੀ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਦਲ ਹੈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਵਾ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੂਗੀ। 3 ਵਜੇ ਫੇਰ ਬੱਦਲਵਾਈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। 8:25 ਤੇ ਸਨਸੈਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ 22, 19, 17, 16 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ, ਔਰ 6:22 ਤੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਕਸ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁੱਪ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਵਣ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬਸ 2-4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਵਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸੀਗਾ ਸੋਲਰ ਐਕਲਿਪਸ, ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 12:55 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਖਤਮ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਟੋਟਲ ਐਕਲਿਪਸ ਸੀਗਾ, ਸਪੇਨ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਬੜੇ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਐਕਲਿਪਸ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਨਸ ਅ ਵਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਛੱਡੋ ਇਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੱਗਣਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਘਟਨਾ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੋਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਲੀ ਜਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਦੇਣਾ, ਘਰ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਜੋਬ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਚਿਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਲਰ ਐਕਲਿਪਸ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਮੂਨ ਐਕਲਿਪਸ ਲੱਗਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਦਭੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਜੀਕਲ ਈਵਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਬੀਚਿਸ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਐਨਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਲਾਈਵ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਆ, ਰਾਏ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਬੜਾ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ ਬੱਦਲ ਘਟਾਵਾਂ ਘਿਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਪਲੈਨਟਸ ਹੈਗੇ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਚੰਦ ਹੈਗੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੈਨਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਥੰਡਰ ਸਟੋਰਮ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਚੰਦ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6478741313 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੱਲ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਲਓ ਜੀ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੱਗੜ 10:14 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੋ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੀ ਲਈ ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹ 10 ਵਜੇ ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਉੱਠਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਘਟਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਚਲੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਟਾਂਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗੇਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੰਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਲੋਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
0: जी, सत श्री अकाल। ते पहला तो दो अपना नंबर।
1: हाँ जी, नंबर है जी 437-234-3175, 437-264-3175।
0: जी, ते दो जी जानकारी हुण जिहड़े अपने लोन दे रही है गवर्नमेंट, यह किना किना नूं मिल सकदा है, कौन कौन एदे लई जिहड़ा है अप्लाई कर सकदे आ?
1: हाँ जी, तो आपका स्टेटस कनाडा में पीआर है, सिटीजन है या प्रोटेक्टेड पर्सन है, और जारी में कहीं भी रहते हैं, इससे बढ़िया लोन कहीं नहीं मिल सकता आपको। रीजन अमाउंट क्या है, 50,000 से लेके 1,70,000 तक इंटरेस्ट रेट क्या है, शुरू के 2 साल 0%, इंस्टॉलमेंट कब स्टार्ट है, 2.5 साल के बाद कब, ब्याज रेट कितना है, 2.5% महीने का नहीं, पूरे साल का 2.5%। तो ऐसा लोन आपको कहीं नहीं मिल सकता, और असली कागज लगते हैं आपके इसके अंदर, और कोई चालाकी नहीं है, कोई मीठी बातें नहीं है। 8 साल से बहुतों को असिस्ट कर चुके, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए।
0: और जैसे फैमिली ऑफ फोर है तो उनका कितना का बन जाता है लोन जो उनको मिलेगा?
1: हाँ जी हाँ जी, अगर फैमिली साइज ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, तो लोन अपर रेंज पे चला जाता है। 160,000 डॉलर इस केस में उनको आएगा। हस्बैंड वाइफ दोनों आराम से कोर्स कर रहे हैं, मतलब एक तीर दो निशाने, आपने स्किल डेवलप करी, ऑनलाइन कोर्सेज करे, एग्जामिनेशन नहीं है, असाइनमेंट है, ठीक है, और बाकी आपने स्किल भी हासिल कर ली, और ऑन अदर हैंड आपको 1,60,000 डॉलर आपके खाते में आ गया। और अगर आपके बच्चे 11 साल से छोटे हैं तो आपकी जो कॉलेज की फीस है वो भी गवर्नमेंट कवर कर देती है, तो मतलब आपको बहुत बेनिफिट है ऐसे फैमिलीज विद किड्स को। तो कॉल करें, असेसमेंट कराएं, और कोई चलाकी नहीं है, आसान से कोर्सेज हैं, हम पूरे दिन तो लगे रहते हैं, फोन पर क्लास अटेंड करेंगे, साथ में लोन आएगा इतना बढ़िया जो कि 0% पे है।
0: अच्छा, कोर्सेज कौन कौन से हैं उनके बारे में बताएं थोड़ा सा।
1: हाँ जी, तो जो मोस्ट पॉपुलर है वो 2 साल का बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें फंडिंग डबल आती है लोन की, और बाकी अकाउंटिंग भी है, हॉस्पिटैलिटी भी है, स्पेसिफिक हेल्थ केयर के कोर्सेज भी है हमारे पास, जो कि थोड़ा बहुत कॉलेज जाना पड़ता है उनमें, पीडीएसडब्ल्यू हो गया, अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट हो गया, लेकिन मेन पॉपुलर है फुली ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बिना 2 से 3 घंटे क्लासेज हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें क्लासेज ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, तो वो तो और ईजी है, इसलिए आप स्किल डेवलप करें, फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें, और कॉल करें, हमारे ऑफिस आए।
0: अच्छा, जब कोर्सेज कर लेते हैं तो जॉब अवेलेबिलिटी होती है कि नहीं, अगर ना मिले जॉब उनको फिर?
1: हाँ जी, अगर जॉब नहीं मिलती तो ये मतलब ये ऐसा हो गया, अगर आपने गाड़ी का लोन लिया, दे नहीं पा रहे तो गाड़ी उठा लेंगे, घर का लोन लिया, किस्त नहीं दे पा रहे तो घर उठा लेंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट के आपके कागज उठा लेगी एडुकेशन के? नहीं। तो इसमें आप गवर्नमेंट से कॉल कर सकते हैं, आपका लोन डेफर हो जाता है 1 साल 2 साल 3 साल। तो इस प्रिय लोन असली कागज के साथ कहीं नहीं मिल सकता आपको, इसलिए आप पीछे ना रहें, रीफाइनेंसिंग के चक्करों में ना पड़े, उन्हें बस आप कमीशन ही देंगे, परों को अमीर बनाएंगे, और यहाँ पे आप स्किल भी हासिल कर रहे हैं और फंडिंग भी हासिल करते हैं, कोई चालाकी नहीं है इसके अंदर।
0: ठीक है। अच्छा, कितना समय कितना लग जाता है, जैसे अप्लाई करते हैं तो लोन आने में कितना समय लग जाता है?
1: हाँ जी, 30 से 90 डेज में पहली किस्त आ जाती है क्लाइंट के अकाउंट्स में, उसके बाद 5 महीने बाद, हर 5 महीने में किस्त आती रहती है, 4 किस्तों में पैसे पूरे जाते हैं, 1,60,000 डॉलर। और इस पे कहते हैं कोई क्रेडिट चेक नहीं है, कोई गारंटी नहीं है इसके अंदर, ये नहीं कि अगर आप नहीं दे पाए तो आपका कुछ ये उठा लेंगे, चॉकलेट उठा लेंगे आपकी, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए इट्स अ वेरी गुड थिंग, कोई पर्सनल गारंटी किसी की, आपको और की गारंटी नहीं चाहिए, कोई क्रेडिट चेक नहीं है, आपका स्कोर 0 भी है या माइनस में है तो वो भी आप एलिजिबल है, कोई चलाकी नहीं है इसके अंदर। इतने लोग आते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, हमारी फीस काम होने के बाद कितनी है, $199, क्यों है इतनी कम फीस, लोग ये भी पूछते हैं हमसे, असली काम करो तो लोग तो तभी शक होता है, क्यों हमें आज में के लोग, जब तक हमें दूसरा बंदा छीलता नहीं है ना, हमें लगता है यार मजा नहीं आया, यार कुछ गलती होगी। ऐसे यहाँ पर कोई कागज एडिट नहीं हो रहे आपके, कोई सेटिंग नहीं है मेरी बैंकों में, गवर्नमेंट डायरेक्ट आपको फंडिंग दे रही, बीच में ब्रोकर बैंक नहीं है पागल बनने के लिए और बनाने के लिए, इसलिए आपको 2.5% साल का ब्याज मिलता है, ना कि 10% साल का। तो इसलिए पीछे ना रहे, असली काम असली तरीके से 8 साल से कर रहे हैं। नंबर नोट करें, 437-234-3175, 437-264-3175, उन्हें कॉल करो, एस्टिमेट लो, 437-234-3175, 437-264-3175। साढ़ा है जी 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड हरिहरनगर डेयरी पे आ जा सकते हैं आप, पहले एस्टिमेट क्विक करा लें, फिर ऑफिस से एनरोल करें, बैच स्टार्ट होने वाला है, 437-234-3175, 437-234-3175। 4372643175
0: जी बिल्कुल जी, नंबर तुसी नोट कर लो ते सरांश नागपाल नूं तुसी कॉल करनी है। पहला अपना फोन ते तुसी अपॉइंटमेंट बनाओ, ऑफिस जाओ, बैठ के गलबात करो ते थोड़ा लोन है जिहड़ा इह अप्रूव हो जूगा। वधिया कोर्सेज करो, अपने आप नूं अपग्रेड करो। नंबर लै लो एक बार फिर 4372643175 4372643175। सरांश थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू थोड़ा। ते लो जी नैक्सट कॉल आपां लैंदे आ ते साडे नाल आजाद जी जुड़े आ। हांजी सत श्री अकाल भाजी। हेलो
1: सत श्री अकाल रजिंदर जी। हेलो हेलो जी,
0: हांजी कैसे
1: हां जी सत श्री अकाल भाजी। बिल्कुल ठीक हूं जी,
0: बहुत बढ़िया सर, क्या कहना चाहेंगे जी?
1: देखो जी मैं तो अब एक ही वक्त कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी 26 अक्टूबर को म्यूनिसिपल इलेक्शन होने हैं ब्रैम्पटन के अंदर या ओंटारियो के अंदर। हम ब्रैम्पटन की बात करते हैं तो जो ये म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन होता है, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा होता है बिल्कुल। आप घर से निकलते हो या घर के अंदर तब भी आप म्यूनिसिपल इश्यू से डील करते हो, घर से बाहर निकलते हो चाहे रोड पे जाते हो, सेफ्टी है ठीक है ना, सब कुछ आपके उससे, क्लीनिंग है, सब कुछ जुड़ा होता है आपके उससे। तो 26 अक्टूबर को एक बदलाव का दिन है और ब्रैम्पटन के अंदर बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रैम्पटन की जो रेपुटेशन है वो मैं कहूंगा भी ग्लोबल पद्धर पे बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ब्रैम्पटन चाहे कि लोगों को कोई लाइक नहीं करता, ब्रैम्पटन शहर को कोई लाइक नहीं करता, तो इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो पता भी होगा मैं टाइम टू टाइम काफी सिटी के मुद्दे चुके हैं, चाहे वो पहले रेंटल लाइसेंस का इशू था, चाहे वो कैमरा का इशू था, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज का इशू, माइनर वेरियंस का इशू था और जेडा सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू था। तो ये जो है ये बदलाव का जो दिन है, ये बदलाव पता की है जी, बदलाव लाने के लिए इंकलाब चाहिए। और इंकलाब कौन लेके आ सकते हैं? इंकलाब जो जनता है वो लेके आ सकता है। मैं सिर्फ ब्रैम्पटन के लोगों को यही कहता कि भी मैं वार्ड 9 और 10 तो सिटी काउंसलर का उम्मीदवार हाँ, इस बार अगर अपन करप्शन से आजादी दिलानी, अगर अपन नेपोटिज्म जिन्होंने भाई भतीजा वार्ड बोलते हैं उससे अगर अपन आजादी दिलानी है, डिक्टेटरशिप पे अगर आप आजादी दिलानी है, क्योंकि ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल पे कोई भी काम पब्लिक कंसल्टेशन नाल होता ही नहीं, सिर्फ बायला सिटी हाल तक बन के सिटी हाल तक बह के बनते हैं, एसी रूम तक बह के बनते हैं, सिटी काउंसिल चैंबर तक बनते हैं, लोगों बीच कोई कंसल्टेशन नहीं होता। अगर इन चीजा पे अगर आजादी चाहिए तो सॉरी वो डॉक्टर आजाद दिला सकता है। डॉक्टर आजाद को लेके आओ, ब्रैम्पटन को आजादी दिलाओ। मैं ब्रैम्पटन के लोगों को यही कहना चाहता हूँ, यू गिव मी वोट, यू गिव वोट टू डॉक्टर आजाद गोयत एंड डॉक्टर आजाद गोयत विल गिव द ब्रैम्पटन बैक। जो इतने माफिया बना है बिग बिजनेसमैन का, वो जो जो जो पॉलिटिशियन है लोकल पॉलिटिशियन, वो एक बहुत बड़ा माफिया है, उत्थे अपना प्रॉपर्टी टैक्स बहुत चोरी होता है, बहुत चोरी होता है। मेरे को काफी इस तरह की इंफॉर्मेशन है जिथे जो स्पेस है वो जो यार्ड है वो कॉमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, 25-25 एकड़ के कॉमर्शियल लोट है और हैरानी होगी कि उसका प्रॉपर्टी टैक्स एक लोट का $1500 से थले साल का, एक लोट का 1200। अगर जब टेम्परेरी जोनिंग चेंज होती है, कोई भी जोनिंग चेंज होती है चाहे टेम्परेरी जोनिंग होती है, उसका प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए, क्योंकि ये जो दो लोट है इनका प्रॉपर्टी टैक्स अगर एमपैक के हिसाब से प्रॉपर यूज ना हो तो $1 million बढ़ता साल की। इतने जो प्रॉपर्टी टैक्स साल का 1500 या 12000 है, वह सिटी हाल पे एक नेक्सस है, माफिया है और इस माफिया ने तोड़ने की हिम्मत तक तो आजाद गोयत विच है।
0: करोगे जो कई बार आप पावर च आ जाने सीट होंगी है उदो आप कई बार ये भी कह लग जाने भी हूं मेरे कल मैं कर रहा कोशिश पर मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, ऐदा की गलबात नहीं होगी जो तुम
1: जित के आ जाने? बिल्कुल इस तरह की गल नहीं होगी जी, मैं हर चीज में अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। देखो असि किन्नी बार देखा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग भी है जो चैनल बोर्ड बिल्डिंग थी
0: जी,
1: जिथे कैमरे कूड़े लाने वास्ते उन्होंने बिल्डिंग बाई की थी, वो बिल्डिंग 2021 पे बीबीजी पेट्रोलियम के विक्रमजीत ढिल्लो थे, उन्होंने 33.4 मिलियन दे खरीदी थी। वही बिल्डिंग सिटी ने उसे 77.8 मिलियन प्लस जो एक्सपेंसिव उसकी खरीदी थी। तो इतने जो एक माफिया बैठा है, जो बिग बिजनेसमैन पहुंचाता है, साडा जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो सानू लोगों ने टैक्स प्रॉफिट टैक्स का रिलीफ मिलना चाहिए, उसकी बजाय साडा पैसा लोगों की जेब से जाता है। लोग हैं वो सफर कर रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता ही जाता है। पीछे ट्रांजिट का देखो, ट्रांजिट का घाटा है ना, ट्रांजिट का घाटा जो 25 मिलियन थी, इन्होंने आर्गो बस चलाई जी डाउनटाउन ब्रैम्पटन से, 10 मिलियन की फंडिंग दी। क्यों? जब तुसी प्राइवेट जब साडे को ब्रैम्पटन ट्रांजिट है तो तुम आर्गो लैन की लड़ की है कि तुम ऑन डिमांड लोगों ने घर जाके चुकते हो, जो रूट है उस तो सर्विस प्रोवाइड कर दो। तो ये सारा माफिया बैठा है, इन्नी मिसमैनेजमेंट फंड है इतने। अगर ये सारी ट्रांसपेरेंसी इतने हो तो साडा प्रोपर्टी टैक्स मैं कहना बढ़ूगा नहीं, साडा प्रोपर्टी टैक्स घटूगा। ये जो माफिया बैठे हैं, हाँ जी, तो मैं बिल्कुल जसविंदर जी ये मैं रेडियो तक कहता कि मैं चेंज करांगा। मैंने 2021 का हार्ट अटैक आया थी जी, मेजर हार्ट अटैक। वाहेगुरु ने मैंने जिंदगी बख्शी थी, मैं उदन पढ़ने दिता थी कि मेरी लाइफ ना लोगों वास्ते है। इसलिए बदलाव एक पॉलिटिक्स का एक नया एरा शुरू होगा। मैं ब्रैम्पटन के लोगों को कहता भी एक ब्रैम्पटन के बीच एक पॉलिटिक्स का एक नया एरा शुरू होना, क्लीन पॉलिटिक्स।
0: ठीक है, अच्छा तुसी डोर टू डोर कैंपेनिंग करन जांदे होणे आ ते की लोकां दे की इश्यूज हैगे? एक तां प्रॉपर्टी टैक्स तुसी कह रहे हो, होर की इश्यूज है?
1: देखो जी, लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स का इशू है, सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू है, और कई तौर पर जसविंदर जी इस तरह दे लोग कहते भी वी डोंट नीड एनी सिटी काउंसिल, वी डोंट नीड एनी रीजनल काउंसिल, वी डोंट वांट एनी स्कूल ट्रस्टी एट ऑल, वी डोंट वांट एनी एमपी एट ऑल, वी आर देयर सो फेड अप बिकॉज ये जो लोग हैं ये लोगों वास्ते काम नहीं करते, जो इनकी ड्यूटी बनती है। कोई भी रिप्रेजेंटेटिव था उसका फर्ज बनना लोगों वास्ते काम करता। ये देखो सारे करप्शन करते हैं, लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता है, लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलती, साडा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ता तो यह भी पता होना चाहिए कि साडा पैसा जाता कितने है। ब्रैम्पटन देखो, पील पुलिस का जो बजट है ऑलमोस्ट 1-1, पील पुलिस का जो बजट है और टोरंटो पुलिस से भी ज्यादा, लेकिन सानू सहूलियत कहीं मिलती है? पील तो बहुत छोटा रीजन, टोरंटो देखो तो बहुत बहुत बड़ा शहर है। तो साडा जो पैसा है वो एक है डिप्टी मेयर पूरी काउंसिल, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है। देखो पहले आया कि भी मिस्टर का एक मता आया कि भी पील पुलिस का ऑडिट होना, मेयर साहब ने और सारी जो काउंसिल है चाहे डिप्टी मेयर जेडे मेरे इन्होंने कहा कि नहीं जी ऑडिट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब तुम आप इन्ना पैसा खर्च करते पील पुलिस का तो साडा फर्ज बनता कि सानू पैसे की रिटर्न मिलती है, जो आप पील पुलिस का इन्ना बजट लाने की सानू सेफ्टी मिलती है, क्या साडा पैसा सही लगता है? चाहे तुम ब्रैम्पटन का ऑडिट देख लो, मेयर साहब ने अपना ऑडिट जो फोरेंसिक ऑडिट था वो खुद कैंसल किया
0: जी।
1: कोई अपडेट नहीं है, कोई टाइम नहीं है, लोगों का प्रॉफिट है पर ये कहना मेरे आने
0: पर ये नाल नाल जाल साहब ये भी होना चाहिए था, जिवें हुण आपां देखदे आ चाहे साडा ब्रैम्पटन कह दिंदे आ फ्लावर सिटी है ना, पर सफाई दा जिहड़ा इन्ना ध्यान नहीं दिता जांदा, जिहड़ी सिटी आ उहदी ड्यूटी हुंदी आ। ईवन के तुसीं आ जिहड़े ट्रांजैक्शन हैगे आ इन्हां ते देखो, जिहड़े लोकां दीआं ऐडां दे पोस्टर लगे हुंदे आ छोटे छोटे, कोई किते पोल्स सारे भरे पए आ, जिहड़े उत्थे ट्रैफिक लाइट्स ते खड़े हुंदे आ उह कई तां उहनां नूं वी पढ़दे पढ़दे उहनां दी लाइट ही ग्रीन तो भी रेड हो जाती मुड़ के, है पिछे भी ट्रैफिक जैम हो
1: जाता। देखो जी केड़ा पोल इतने इस तरह का नहीं है ब्रैम्पटन का जिथे साइन नहीं है ना हो, जो साइन मेरे आने के बाद ब्रैम्पटन शहर से एक भी साइन नहीं होगा इस तरह का, कोई भी पोल का साइन नहीं होगा, क्योंकि पोल का साइन होता तो फोन भी लिखा होता उसे कॉल करके फोन किया जाएगा, या तो गेट योर साइन क्लीन विद इन 48 आवर और 1 week, if you don't clean anything, we are going to issue the ticket. We will come to your home.
0: बिल्कुल ठीक है।
1: I will hire the volunteers. I will work tirelessly. I will report myself. और ये जो ब्रैम्पटन का जो शहर है ना, पहले देखो फ्लावर सिटी था, फिर बन गया गोलियां वाला सिटी, गोलियां ही तुम्हें पता है एक्सटॉर्शन बहुत होता है, अब शहर की बन गया, अब ये गार्बेज सिटी भी बनने लग गया। ब्रैम्पटन नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा गार्बेज रिसाइकलिंग प्लांट जो है उसकी ओपो बनने लग रहा है, जो 190 मेट्रिक टन जो जो जो गार्बेज बर्निंग कैपेसिटी उन बढ़ के 900 मिलियन मेट्रिक टन किया जा रहा है। कौन बोलता है? मेयर कितने है? डिप्टी मेयर हरकिरत कितने है? मैं क्यों नहीं बोलता? डिप्टी मेयर हरकिरत में तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बहुत बड़ा इन्वॉल्व है। $24 मिलियन जो निवास लिविंग जो अफोर्डेबल हाउसिंग की गल करता है, मैं लॉन्ग टर्म केस गल नहीं करता, तो निवास लिविंग जो अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है जिथे जो डिप्टी मेयर है वो खुद कल्ला जो है ना उसका डायरेक्टर, और वो जो जो कंपनी फॉर्म हुई नहीं, कंपनी नहीं बनी, कारपोरेशन नहीं बना, जमीन की ट्रांजेक्शन नहीं हुई, और सिटी हाल से 24 मिलियन की फंडिंग इन्होंने अपने घर उतरा, टोटली कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
0: ठीक है, ते लो जी, बिल्कुल डॉक्टर आजाद गोयत ये वार्ड नंबर 9 ते 10 तो जेडे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, हुण 26 अक्टूबर नू इलेक्शन हैगे है ना, ते सिटी कौंसलर दे लई इन्हां ने अपना नामजद किया, सो तुसी इन्हां नू जरूर इन्हां दा साथ देना, बाकी आपां आउण वाले समय च इन्हां नाल गल्लां बातें इदां ही करदे रहांगे, जेडे इशूज हैगे आ तुसी वी मैनू सेंड कर सकदे हो भी जदों भी जेडे भी हुण इलेक्शन कंटेस्ट करनगे ना आउणगे अपने रेडियो ते, ते अपा उन्हां नू केड़े केड़े क्वेश्चन जिहड़े पुट कर सकदे आ तुसी मैनू भेज दिया करो, ते आपां जरूर उन्हां बारे भी गलबात करांगे, ते थैंक यू सो मच आजाद साहब, ते आउण वाले समय च आपां होर गलबात करांगे, अपना फोन नंबर दे दो।
1: हाँ जी, 6479999951। मैं एक एक नारा देंदा जी ब्रैम्पटन दे लोगां, तुसी मैनू वोट दो, मैं तुहानू ब्रैम्पटन पिछेवांगा, यू गिव मी वोट आल गिव ब्रैम्पटन बैक, लेट वर्क फॉर ए चेंज, क्योंकि ए चेंज ए नहीं भी एक 9-10 होना चाहिए, मैं कहता भी जो डीजल जो करंट काउंसिल उस विच कोई भी बंदा डीजल हो नहीं करता, लेट ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज एंड लेट मेक द सिटी ग्रेट अगेन, क्योंकि बहुत हो गया इन्ना इन्ना। एक चीज और मैं इतने कहना चाहता जी, 2 रुपए कई बार इन्ना इन्ना उत्थे लोग फ्रस्ट्रेटेड है, मैं कहता भी दूसरी कम्युनिटी के दे तो तुम मान लो उनके कार्ड वो ब्राउन देख के कार्ड भी नहीं लेना चाहते, वो कहते वी नो यू गाइस आर करप्ट, यू डोंट केयर अबाउट अबाउट आवर सिटी, ये जो पॉलिटिशियन है ना इन्होंने लोगों ने इन्ना डिवाइड कर दिया, करप्शन करते हैं सफर असी करते हैं, सफर कम्युनिटी करती है, सारी कम्युनिटी इतना सफर करती है, एक दूसरे पे हेट करती है, तो मेरे आने के बाद मैं इस तरह का बढ़िया माहौल बनाऊंगा जो पहले होता था कि एवरीबॉडी एवरी कम्युनिटी रिस्पेक्ट इच अदर।
0: जी थैंक यू जसिंदर जी, थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू थोड़ा, ते लो जी जरूर जिहड़ी गलबात आउण वाले समय च भी आपां इहनां नाल करदे रहांगे, ते हुण जरूर गलबात करांगे, क्योंकि ना वैसे जिवें मैं गल कीती साइन लगे हुए आ जां एदां दीआं प्रॉब्लम जिहड़ीआं आपां नूं देखण नूं मिलदीआं इंटरसैक्शन दे उपर है ना, ते उत्थे देखो जिहड़े लोग खड़े हो तो यही पढ़ी जाते रेनोवेशन वाले कौन है, कोई मसाज वाले, कोई कुछ कोई कुछ, तो जबकि वो पोल एन क्लीन क्लीयर होने चाहिए, असी तो जदों भी देखते हैं साढ़े घर चो सारे तो फोटो खिंच के सिटी नूं भेज देंदे भाई आ देख लो है ना, उन्होंने ईमेल भी आ जाती है फिर, सो यह भी थोड़ा जिहड़ा काम है जरूर इदां दा होना चाहिए। तो लो जी आपां हुण नरदेव सिद्धू जी नाल गलबात थोड़ी जी करिए, नरदेव जी स्वागत थोड़ा।
2: बिलकुल
0: जी,
2: चलो आप ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਗੇਜ ਕਿਸੇ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੇਜਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ

0: एच के मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी, बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। एच के मूवर्स, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
1: हासल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर्स।

0: यार इना इंश्योरेंस ने तू कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनी बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
2: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन
3: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन

0: ब्रैम्पटन या फिर तीजे लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूट लैंड 9054569900
1: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशे तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडिया के नशे तो दूर कर देंगे डॉक्टर कुमार लेडीज़ के मर्दों के गुप्त रोगों का इलाज डॉक्टर कुमार बुजुर्गों के मोढ़े गोडे दुखते हैं भाई डॉक्टर कुमार हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे आ डॉक्टर कुमार हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा माल्टन गुरु घर के कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल कर सकते हो।

0: हंसराज हंस साहब अपने शहर दे विच सितंबर 18 नूं आ रहे हैं लिविंग आर्ट सेंटर दे विच मिसेस आगे जो बहुत प्यारा एडिटोरियम बनया है बहुत प्यारा है थिएटर बनया है और तुहाडे वास्ते इह शो असीं लै के आए हैं सितंबर 18 नूं टिकटां ticketmaster.ca तों लै सकदे हो हरप्रीत जी की कहना चाहोगे सब तों पहला वेलकम
1: बिल्कुल जी जी सो आपां इंश्योरेंस दे इनवेस्टमेंट ऑप्शंस दे डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स दी गल करदे रहिंदे आ सो जिथे आपां रेगुलर इंश्योरेंस प्लान्स दी गल करदे आ जिहदे विच तुसीं अगर अपनी कवरेज लैनी हैगी आ चाहे ओह लाइफ इंश्योरेंस दा प्लान आ क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस दा प्लान आ तुहाडी एज दे अकॉर्डिंगली तुहाडी हैल्थ दे अकॉर्डिंगली तुहाडी फैमिली हिस्ट्री दे अकॉर्डिंगली तुहाडा प्लान जिहड़ा हैगा उहनूं डिजाइन कीता जा सकदा बट कई बार इदां हुंदा कि सानूं कोई ना कोई मैडिकल रीजनस हुंदे हैगे आ सानूं रेगुलर कंपनीज तों पॉलिसी नहीं मिल पाउंदी हैगी असीं ट्राई कीता साडी पॉलिसी डिकलाइन हो गई जां साडा रेट काफ़ी ज़्यादा इनक्रीज़ हो के मिलिया सो ओह ड्यू टू साडी अपनी मैडिकल हिस्ट्री करके हो सकता है जां साडी फैमिली हिस्ट्री दे विच वी एक तों ज़्यादा मैंबरस नूं सेम कंडीशन आ उहदे करके वी हो सकदा कि सानूं कवरेज ना मिले जां इस तों इलावा कुछ नॉन मैडिकल रीजनस हुंदे हैगे आ कि ड्राइविंग लाइसेंस दे उपर ज़्यादा टिकटां हैगियां आ जां फिर तुहाडा कदी ड्रिंक एंड ड्राइव असीं चार्ज होए आ कोई क्रिमिनल चार्जिज होए आ जां फिर कदी बैंकरप्सी कीती सीगी इन्हां रीजनस दे करके वी कई वारी आपां नूं रेगुलर इंश्योरेंस प्लान नहीं मिल पाउंदा हैगा तां उस सिनेरियो दे विच साडी कोल नॉन मैडिकल ऑप्शनस हैगियां जिहदे विच तुसीं अपनी कवरेज लै सकदे आ क्योंकि कई वार इदां असीं सोच रहे हुंदे कि साडियां लाइबिलिटीज हैगियां बट सानूं कवरेज नहीं मिल रही सो एक वार जरूर तुसीं साडे नाल गल कर सकदे आ क्योंकि ब्रोकरेज होण करके ऑलमोस्ट सारियां मेजर इंश्योरेंस कंपनीज दे नाल आपां डील करदे आ एंड कुछ कंपनीज इदां दियां हैगियां ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ $500,000 ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂ $1,000,000 ਤੱਕ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਵੋਗੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪਲਾਨਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ
0: 416-1760
2: नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते भैया
0: शुगर करो ठीक कोलेस्ट्रॉल ठीक करो जल्दी गुरु जी
2: क्या है भैया आप भगवान को आशीर्वाद से हमारा शो सुन के बहुत लोग पेशेंट्स बहुत लोग आ गया था
0: जी जी
2: सारा लोग में भगवान आशीर्वाद से ठीक भी हो गया था
0: वेरी गुड
2: और एक एक लोग के एक से चार लोग चार से दस लोग वैसा हमारा पास आ रहा है ठीक होने के लिए मैं कर रहा है आयुर्वेदिक एंड हर्बल नव जनरेशन से ये काम कर रहा है
0: जी जी
2: आज कल से नहीं है मेरे को बहुत साल से बहुत ईयर से हमको एक्सपीरियंस हो गया ये जड़ी बूटिया से ये काम कर रहा है
0: जी
2: ये काम जड़ी बूटिया सारा में हिमालया से और केरला से और अच्छा अच्छा जगह से लेकर आके उससे हम लोगों को इलाज करता है सारा बीमार के लिए उसमें ज्यादा लोगों को इधर आजकल जॉइंट पेन आर्थराइटिस एस्ट्रो आर्थराइटिस रूमेटिक आर्थराइटिस से बहुत लोग सफर हो रहा है उसको बहुत लोगों को ठीक हो गया और जॉइंट में कैथलाजी लिगमेंटिना भी कम हो रहा है लोगों को क्योंकि विटामिन डी कम होता है बोन्स में ताकत कम होता है
0: जी जी
2: और बॉडी बॉडी सुन जाता है बॉडी में पानी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होता है इन्फ्लेमेशन बॉडी को अंदर जॉइंट्स को अंदर मसल्स को अंदर होके सारा हड्डियां वीक हो जाता है इसलिए दर्द हो जाता है
0: जी
2: सम पीपल्स को फूड अच्छा नहीं होता इसलिए कोलेस्ट्रॉल हो जाता है कोलेस्ट्रॉल मेरे पास 1 month में कंट्रोल में आ रहा है और वैसा शुगर के लिए भी वैसा बॉडी ताकत के लिए और एसिडिटी गैस्ट्रिक के लिए और स्किन डिसीज के लिए कोई भी प्रॉब्लम है बॉडी में को अंदर हमारे पास भगवान आशीर्वाद से इलाज हो रहा है बहुत लोग आके हो रहा है
0: जी गुरु जी का नंबर मैं सबसे पहले आपका नंबर जोड़ देना चाहूँ गुरु जी कौन से नंबर पे आपको कॉल की जा सकती है
2: यस जी, मेरे को दो लोकेशन है जी, एक स्कारबरो में है, एक ब्राम्पटन में है। स्कारबरो में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रहता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ब्राम्पटन में रहता है। मेरे को कंसल्टेशन फीस बिल्कुल नहीं है, फ्री कंसल्टेशन, नाड़ी देखता हूँ। देखो भैया, हमारा इंडिया में 70-80 साल को पहले टेक्नीशियन नहीं है, लैब नहीं है, स्कैन नहीं है, MRI नहीं है, तब लोगों को नाड़ी देखता है, नाड़ी परिशोधन करता है। नाड़ी का मतलब पल्स देखता है, पल्स में क्या बीमार है, वाता पित्त कफा दोष रहता है, ये तीन दोष में क्या बीमार है बता करके उसको हर्बल से इलाज करता है। वही फैमिली से मैं आ गया था, मैं भी इधर नाड़ी चेक करता है, पल्स को अंदर क्या बीमार बता करके उसको इलाज देता है। मेरा फोन नंबर 437-438-3399, रिपीट अगेन
0: जी,
2: 437-438-3399, ये मेरा फोन नंबर है। कोई भी मेरे को फोन करके आ जाना, फोन करके आए तो मैं उसको मेरा अपॉइंटमेंट देता हूँ, कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है
0: जी। जी,
2: देखने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम बता करके क्या करना मैं बताऊंगा जी।
0: बहुत अच्छी बात है गुरु जी। एक बात और मैंने पूछनी थी आपसे, और जिन लोगों को कई बार बवासीर होती है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, कई बार क्या कहते हैं कुछ और इश्यू आ जाते हैं बॉडी में, उसके इलाज आप कैसे, ये नाड़ी देख के नमज देख के सब कुछ आपको पता चल जाता है जी?
2: भाई भाई बताइए,
0: आप कहीं बिजी हो?
2: ना बिजी नहीं, आपको आपसे बात कर रहा हूं।
0: अभी एयर पे हो ना, आप थोड़ा सा साइड पे चेंज
2: करो। यस।
0: मैं ये बता रहा था आपको, आपके ये पूछ रहा था, जिन लोगों को कई बार बवासीर होती है उनके लिए क्या इलाज है?
2: हाँ, बवासीर में भैया नौ तरफ बवासीर में है
0: जी,
2: और फाइल्स होता है, और वो अंदर को होता है, बाहर को आता है, ब्लड आता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, और वो बाहर जाने के टाइम में दर्द होता है, और जलन भी होता है
0: जी, जी।
2: वैसा बवासीर में नौ तरफ बवासीर के लिए हमारा पास इलाज है भैया
0: जी, जी।
2: हम लोगों को क्या होता है, हमारा कोलन में 40 ब्लॉकेज होता है, अच्छे से नहीं बाहर आ जाता है, और ये मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारा पेट साफ होता है भाई, किसी प्रॉब्लम नहीं होता है, मेन पेट साफ हो ये तो अच्छा होता है, पेट साफ होने का टाइम।
0: बहुत अच्छी बात है, और मैं एक बार फिर से आपको ये बताऊंगा कि आपने जितने भी हमारे लोग इस वीकेंड पे आपके पास आएंगे, पंजाबी विरसा की फैमिली आएगी, उनकी शुगर और कोलेस्ट्रॉल आपने ठीक करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
2: थैंक यू भैया, बहुत लोग आ रहा है, भगवान आशीर्वाद से सारा लोगों को हम ठीक करने के लिए बैठ गया, ठीक करूंगा।
0: नंबर दो अपना जल्दी जाने से पहले सर।
2: यस भैया, 437-438-3399
0: 4 3 7 4 3 8 3 3 9 9। शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम पंजाबी विरसा हरप्रीत जी, बहुत फैमिलीज हल्ले भी सुपर वीजा दे जां विस्टर वीजा दे आनियां, उन्हां बारे होर गिना जाओगे, नीलम जी आगे उन्हां गलबात भी करांगे जी।
1: बिल्कुल जी जी, सो क्योंकि समर दा टाइम चलदा पिया है, साडे बहुत सारे रिलेटिव्स विजिटर वीजा ते इत्थे आ रहे हैं, जां फिर सुपर वीजा दे उपर असीं अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स नूं स्पोंसर कर रहे हां जां री विजिट करदे आ। जिहड़ी इंश्योरेंस हैगी आ ना, इक तां जदों सुपर वीजा लई अप्लाई करदे आ ओहदे लई इक मैंडेटरी कंडीशन हैगी आ कि आपां नूं कवरेज लैणी पैणी आ कैनेडियन इंश्योरेंस कंपनी तो, बट वो कंडीशन भी गवर्नमेंट ने ताही रखी सी कि कनेडियन कंपनी तो होनी चाहिए आ, लाख डॉलर की कवरेज। उन्होंने भी पता सी कि जे असि हुण पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स लई कोई सुपर वीजा लॉन्च कर रहे हैं तो पेरेंट्स की एज ज्यादा हैगी, ग्रैंड पेरेंट्स की एज ज्यादा, इतने आके उन्होंने कोई मेडिकल इशूज आएंगे, इस करके गवर्नमेंट के उपर उस चीज का प्रेशर ना पवे। इतने के जो रेजिडेंट है जो प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं उन्होंने उपर उस चीज का प्रेशर ना पवे, इस करके उन्होंने कंडीशन मैंडेटरी कर दिता। वह मतलब यह है कि जे हुण इतने आते हैं उन्होंने कोई मेडिकल इशूज आ जाते हैं तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी जी उन्होंने कवर करेगी कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन के। इसे करके हम विजिटर वीजा के लिए मैंडेटरी कंडीशन तो नहीं हैगी, बट यह है कि सिचुएशन तो सेम ही आ, क्योंकि कल इनकेस कोई रैलेटिव इतने आते हैं जिथे उन्होंने स्पॉन्सर करके इतने बुला रहे हैं घूम फिर वैडिंग अटेंड करने के लिए, जो कल इनकेस उन्होंने कोई भी इदा का मेडिकल सनैरियो आ जाता है कि कोई एमरजेंसी आ जाती है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है, कोई सिकनैस हो जाती है, कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उस केस के फिर ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਵਾਓ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਕ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋ ਵੀਕ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਪਰ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਵਰੇਜ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਵਰ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋਣੀ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਕਿਹੜਾ ਇਨਹੈਂਸ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਸਰਨਸ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋਵੋਗੇ ਸੋ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 416-817-6500 416-817-6500
0: ਨੀਲਮ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ
3: ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੌਰਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੀਲਮ ਜੀ ਅੱਜ
3: ਮੌਰਗੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਪਲ ਆਫ ਥਿੰਗਸ
0: ਜੀ
3: ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਨੋ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚ ਅਗਰ ਯੂ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ and a principal property te ode ch tonu you don't have to put 20% down
0: ji
3: eh eh assi ik ik topic te gal dooji gal ohna second question hunda ki tusi sanu a lender ton leke daoge ki b lender ton
0: ji ji
3: ji under 20% down payment na whatever 15 ya 10 ya 5 ya 7 whatever under 20% that cannot go to b lender or private or anywhere else that has to go just a lending
0: ji
3: ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਰੀਸੈਂਟ ਕਲਾਇੰਟ ਆਏ ਸੀਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਨਵਰੀ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੱਲ ਗੁਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੇ ਵੈਂਟ ਸਮਵੇਅਰ ਐਲਸ ਸੋ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਰਗੇ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਟੁੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਊਟ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਲੈਟਰਲ ਪਾਤੀ
0: ਠੀਕ ਹੈ
3: ਹੁਣ ਨਾਓ ਦੇ ਡਿਨ ਹੈਵ ਇਨਫ ਐਕੁਇਟੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਿੰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੋ ਸਮ ਤੱਕ ਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਗ ਗਏ ਦੇ ਕੁਡਨ ਡੂ ਨਥਿੰਗ ਕਿਸੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਾਈਲਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੀਤੀ 6 ਮੰਥਸ ਸ਼ੁਡ ਡੂ ਦੈਟ ਟੂ ਪੀਪਲ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਸੌਰੀ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
0: ਠੀਕ ਹੈ
3: ਦੈਨ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਅਡਾਂਗੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ
0: ਜੀ ਜੀ
3: ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੋਨ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੀ ਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਘਰ
0: ਓ ਹੋ ਹੋ ਅੱਛਾ ਨਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬਚਾਓ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸੇਲ ਦੇ ਨਾ ਭੇਜਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਨੀਲਮ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨੀਲਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆ ਸਾਡੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ ਨੀਲਮ ਜੀ ਔਰ 647-737-10-647-737-9-8710 ਦੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨੀਲਮ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਖੀਰ ਤੇ
3: ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲਾਇਰ ਫੀਸ ਦੇ ਦੋ ਯੈਸ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਰ
0: ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ
3: ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਫੁੱਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਫਰੋਮ ਅ ਰੀਅਲਟਰ ਟੂ ਲਾਇਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਾਟ ਜਸਟ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸੋਰੀ ਨਾਟ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਫਿਊ ਆਫ ਮੋਰ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ I'll give you some cash back as well. And also, jehde ton PST kehndi aa on CMSC fee te, I'll take care of that as well. So as the appraisal fee. If this is the whole package you're using mine.
0: Very good.
3: Mortgage broker, mortgage queen, mortgage alliance in Neelam Sarav. Anything to do with the mortgage, just call me. I'll take care of you.
0: Thank you very much. Number deo dobara, please.
3: 647-739-8710. 647-739-8710.
0: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹੰਝੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹਰਜੀਤ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ

गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज दा ए दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के सुखी निज साहब बुत नूं दूर प्रोग्राम पेश करनगे, मनप्रीत जी इंडिया तो खबरां पेश करनगे, नाल किरण भी साथ देणगे। छतरी छा रिपोर्ट हाजिर है जनाब। 6:19 ते सूरज सिंह आया, 8:25 ते चले जाना। हुण जरा ध्यान नाल सुनना मामे दा की हाल आ। चंद मामा 7:16 ते सवेरे आया ते शाम नूं 9 बजे जाना। खैर अज दा तापमान 28 डिग्री तक, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड। कल नूं 26 डिग्री, मोस्टली सनी। सैटरडे नूं मोस्टली सनी, 27 डिग्री। संडे नूं सारा दिन छतरी छाता दी लोड़ पएगी, तापमान 26 डिग्री। मंडे नूं सूरज चमकेगा 28 डिग्री, ट्यूजडे नूं सूरज चमकेगा 30 डिग्री तापमान होणगे। स्पोर्ट्स के खेत्र विच वेस्टब्रुक एक बहुत तगड़ा प्लेयर है NBA का। 18 साल लगातार खेल के हुण रिजाइन करता। जिहड़ी लेकर्स है वह विकी है।

0: ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।
1: ਫਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551।
2: Study visa, express entry, Canadian express entry, spousal file, parents PR, super visa, nanny, work permit, farmer, investor, ya self-employed di file, gal ki, immigration di har problem da solution lain lai, community de jaane pehchane ate tajrubekar immigration consultant Gary Virk nu milo.
3: Koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya, hove immigration da koi bhi masla, hamesha yaad rakho ikko hi na ate ikko hi tha, CIC immigration, hune hi call karo 416-456-6161।
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई।
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते।
4: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381।

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
1: भाई कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और visit

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो.
1: कोई Case Refuse हो गया या Appeal ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही Call करो, 456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई.
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है.
4: जेकर तुसी भी किसे तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने. पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381 ते.
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो. बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे. हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नू कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381.
5: ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਐਮੀ ਵੇਅਰ.
6: ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਰੂੰ, ਆਓ ਜੱਟ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਦੇ.
5: ਟੂ ਸਾਊਂਡ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਮੀ ਵੇਅਰ ਲਾਈਵ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ. August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valio, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
7: ਦੋਸਤੋ, ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.desparadesradio.com ਜਾਂ www.desparadestv.com. ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ.

0: दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है, पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं। इंश्योरेंस फील्ड दे विच हजारां लोकी आंदे ने ते हजारां ही जांदे ने, पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर ही टिके रहंदे ने।
1: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट्स दे लई सही

0: रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटल ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
1: राजधानी के किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
0: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
3: ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475041557 6475104-1557। ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 416-477-2040, 416-477-2040